सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुट चुके जी एक बार फिर यह खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत के नाल।

माँ बोली है मावा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, माँ बोली है मावा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए इहदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा। बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा, अपनी पछाण वाला दीवा।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap

प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए में चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5 पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

Market Plaza में Brampton में Alpha Optical Any Age Any Stage जी हाँ, आपकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 meters का डिलीवरी बॉय कॉल कीजिए 905-456-2733 Alpha Optical, your vision is your business।

0: मानो तो
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी महंगी जाको मिलनी और बारात से जोड़ी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 Melanie Drive, Unit 9 and 10, Brampton, Telephone 905-799-9400

कृपा तारी आज हर आराधना में पूरण काल हमारे हर जियो तो सुख संपत राज राम ले हो पाई मेरे को रब या गए अरदास राम जो पाओ सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा।

सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुरबचनी मन हिचे पल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरण पुरख विदाता रहा। आनंद विनोद मंगल गुरदावा गुरु नानक भय दयाला।

गुण गाए भक्त गया हर नाम से आए रहा सबरी थाई रव्या पाद जुगाद जाता मन परता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाई उठे सब पाए सतगुरु टूटे पार रहन।

सभी श्रोताओं का धर्म संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया सा मौसम है आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इलाके भी हो गए हैं जहाँ पे इतना कहर पड़ा है गर्मी का कि आग लगी है और बहुत लोगों में त्रासदी तकलीफ हो गई है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये त्रासदी दूर करें, इस संसार में शांति रहे और सबकी सुरक्षा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना को लेकर के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, लेटेस्ट बारबेक्यू, किचन की गैजेट्स और आउटडोर फर्नीचर, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, बहुत बढ़िया रेट में, बहुत बढ़िया क्वालिटी, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-799-0045-799-0045। अब आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, और इस वीकेंड में आपके लिए ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, दो दिन की एकादशी, एक वो जो व्रत रखने वाली है पहले एकादशी, तो इसमें बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते हैं तो बहुत सारी और पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप मूविंग के लिए ट्रक बुक करना है तो आज ही बुक कीजिएगा 416-524-4 तो आपका सामान बड़ी हफाजत से पहुंचाते हैं कि बहुत सारी टीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक कीजिए और बिल्कुल अपना बेफिक्र हो जाइए मूविंग के बारे में, क्योंकि मूविंग मूव होना सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, मूव होना कोई आसान बात नहीं है। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, किचन वाटर वॉल्फ में, तो मुंशी जेंट को कॉल कीजिए 519-546-1206-1260 पे आप नसीब खंड को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है, वो आपको सुनाते हैं।

खाना ऑर्डर करना है, बहुत बढ़िया आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्सा रेस्टोरेंट बैलेडू बर्तानिया पे मौजूद है, तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको ये एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये मोहम्मद रफी लता जी का गाया हुआ गीत है। तो फिल्म थी आपके लिए जन्म जन्म के फेरे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और गाना कमाल का है।

जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए एक और बहुत गाना बढ़िया मैंने चुना है। तो ये जो रात को तो मौसम थोड़ी ठंड हो जाती है, बहुत ही हवा ठंडी चलती है, तो रोमांटिक सा वातावरण हो जाता है आप सभी के लिए। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और आपको बहुत बढ़िया मौसम है, तो कोशिश कर रहे हैं कि मनोरंजन भी आपका बढ़िया सा हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो जरूर हमें आप मैसेज कर सकते हो 6477737640। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 से सागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-625-0055 905-625-0055। अब अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए लंदन में मौजूद है। तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप और जानकारियां ले सकते हो। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए गोर रोड में लंदन में मौजूद है। तो किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा लंदन के आसपास के इलाके में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर 416-524-704। आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 9057990045। पहले की और देरी की जाए आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए। जो भी क्राइम की रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, एक्सट्रोशन की न्यूज आ रही हैं, वो जब तक हमारा प्रोग्राम वीकेंड में आता है आप तक सभी खबरें पहुंच चुकी होती हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत आपके लिए।

पर चांदनी आई कमल कमल दरिया ऊपर चांदनी आई कमल कमल एक बात कहता हूँ तुमसे एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनकार

आपका स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह आपका मनोरंजन रात को भी हम 10 से 11 बजे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर के पेश हो जाएंगे। अब आपके लिए अगर आपने क्लीन का काम करवाना है, मास्टर क्लीन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। लंदन के आसपास के इलाके में किसी तरह का भी आपने क्लीन का काम करवाना है तो आप मास्टर क्लीन डिपो पे जाइएगा और जानकारी के लिए masterclinicdepot.com पर जाइए और पूरी जानकारी लीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय तकरीबन खत्म ही होने वाला है तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने श्रद्धा पला, रात को आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जो लोग प्रोग्राम के पसंद करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्दी कला तेरे पाने सुबह पला है वंडरफुल डे एंड सेफ वन। ब्रैम्पटन में कारा सागा चल रहा है 3 दिन का, आप जरूर जाइए, बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: पंजाबी लहरा
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरा
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरा पंजाबीयत दी सेवा विच।

0: मॉर्गेज अलायंस मॉर्गेज क्वीन नीलम सरव 647 739 87 10। मनप्रीत एंजॉय योर डे।
1: हां जी थैंक यू सो मच मैम। तो बिल्कुल तुसी गलबात कर लो नीलम सरव जी दे नाल, नंबर है 6477398710 647 739 87 10 दे उपर नीलम सरव जी दे नाल तुसी संपर्क कर सकते हो। गिल्ड स्वीट फैक्टरी जेडे कि प्योर वेजिटेरियन ने, इन्हां दे नाल तुसी जरूर गलबात करो। सारियां मिठाइयां शुद्ध खोए दियां मिठाइयां इह मेड इन कैनेडा हुंदियां, इन्हां दियां कितों बाहरों नहीं मंगवाउंदे। ते लाइव केटरिंग तुहाडियां सारियां स्पैशल ओकेजन्स दे विच करदे ने। मशीन समोसे भी अवेलेबल ने, हैंडमेड समोसे भी तुसी लै सकते हो। इन्हां दा खाना बहुत दूर दूर तक स्टोर्स दे विच पहुंचाया जांदा है। 5 लोकेशन्स इन्हां दीआं चलो फ्रैशकोस दे विच ने, 2 लोकेशन्स कैलगरी दे विच ने, ते हैड ऑफिस इन्हां दा लोकेटेड है 2131 विलियम्स पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन दे विच। लाइव फूड ट्रक केटरिंग करते हैं तुहाडियां सारियां स्पैशल ओकेजन्स दे विच। गिल्ड स्वीट फैक्टरी नंबर 9057992616 905-799-2616 दे उपर तुसी इन्हां दे नाल जरूर गलबात कर सकते हो। नैक्सट फरमाइशी गाना गैरी गिल जी हैमिल्टन तो, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मोहम्मद सदीक जी दी आवाज़ दे विच। तुसी इंजॉय करो ते सुनदे रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: लाइफ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये कागज लगते हैं, बैंक को तो सबमिट हो नहीं रहे हैं। और जितनी आपकी इनकम कम है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड है, उन्हीं को फायदा है इसमें, जिनकी इनकम 2024 के एनुअल पे इनकम कम है, कम है, कम है, तो ही कॉल करें बस। ज्यादा है तो कॉल ना करें, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं है इस चीज का। हम उसी को एंटरटेन करते हैं जो बंदे स्किल, जो बंदे सूट करते हैं इसको, ऐसे किसी को नहीं भेज देते। हमारे पास इतने क्लाइंट आते हैं, सर उन्होंने ये कहा था, दूसरे एजेंट ने ये कहा था, पता नहीं लोग क्या क्या मार्केट में एक दूसरे को पागल बनाते हैं। हम तो ओरिजिनलिटी से काम कर रहे हैं। जो बंदा हमारे पास आता है वो रिटेन हो जाता है, एलिजिबल होता है। तो
1: सर दोस्तों, तुसी जे तुहाडे मन च कोई क्वेश्चन आ, कॉल कर लो। सिर्फ कॉल करना भी फ्री है। एक बार कॉल करके इन्हां नूं आपदी सिचुएशन दसो कि असी जी आ इन्नी इनकम आ, असी आ फैमिली साइज आ, ते इस तो बाद जे इन्हां नूं कहता हां जी तुसी 60,000 लई एलिजिबल हो, 40 लई हो, 30 लई हो, 30 तुहानूं मिलूगा, 30 लोन दा मिल जूगा, 50 तुहानूं मिलूगा, 50 लोन दा मिल जूगा, फिर तुसी प्रोसीड कर लो। ते इन्हां नूं पैसे 199 जां 499 डाल देने, ओह कदों जदों तुहानूं तुहाडे पैसे खाते दे विच आ गए। सारी गल्लबात लई 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
1: ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ?
0: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਟ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
1: ਅੱਛਾ,
0: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਲੋਨ ਦੇਖੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ, ਹਮ ਲੋਕ ਲੋਨ ਸੇ ਡਰਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ। ਬਟ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕੁਛ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 0% ਹੈ ਵਿਆਜ, और उसके भी 6 महीने के बाद किस्ते स्टार्ट है, 15 साल तक आप पे कर सकते हैं।
1: okay.
0: और 2.5% साल का ब्याज है, मतलब 50,000 का आपने, अगर फैमिली ऑफ 5 है, 50,000 ग्रांट आया, 50,000 लोन आया, जो लोन है 50,000 का आपने 55,000 वापस करना है 10 साल से 15 साल में, बताइए 5,000 ब्याज है 10 से 15 साल का, इतना कम ब्याज
1: 2.5% ही है ते, हां जी
0: 5% साल का ब्याज, ओपन लोन है, राइटर में पे कर दो 3 साल बाद अगर आपने पे करना है तो।
1: वाह जी वाह, 437-264-3175 कम की करना तुसी, कोर्स करना, कोर्स केड़े ने भाई जी? ओहो ता ऑनलाइन ने, जिवें आपां फोन ते रीलां देखदे आ, बस ओ रीलां ला कमियां देखदे देखदे तुसी कोर्स तुहाडा अटेंडेंस लग जो। हां जी,
0: मतलब
1: फोन देखदे देखदे फोन दे उत्ते क्लास लग जूगी।
0: मैंने अपनी वाइफ का भी सेम करा, मैंने बोला यार अप्रैल में उन्होंने ज्वाइन करा, पता नहीं हम लोगों को डर ही रहता है जीरो से, राइट? बट हमने 8 साल में लोगों को असिस्ट करा है, तो मतलब लोगों को हिचक दूर करनी चाहिए, जो रह गए हैं उनको भी एनरोल करना है। इतने टाइम हम फोन पे लगे रहते हैं जैसे आपने कहा, तो हम स्किल हासिल करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना नुकसान ही करा रहे हैं अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि आपके आस पड़ोस पे सब अप्लाई कर चुके हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारी तो 200 या 500 फीस है काम होने के बाद लेते हैं। आप नहीं देंगे तो आपका पड़ोसी दे देगा।
1: नाले वैसे भी जो ना घर जाइना, जे तो धर्म पत्नी फोन चला रही है तो ओके, तुम उन्होंने सामने सोफे ते बैठ के कोई रील देख लो, फोन दे के थोड़ा जा हस जरूर लो, भी हस के जे कोई ताडे घरे कलेष पैंदा, पर हुण तुसी कहो भी मैं तो भी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे तो क्लास आ। सो नंबर एक का 437-264-3175। अच्छा, सिंगल मदर्स ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਾ, ਹਮਾਰੇ 30% ਕਲਾਇੰਟਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਹਮਾਰੇ। ਆਜ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਜਾਂ 5 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜੋ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਔਰ
1: 10 ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
0: ਆਰਾਮ ਸੇ?
1: ਅੱਛਾ,
0: ਆਰਾਮ ਸੇ,
1: ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਆਨਲਾਈਨ, ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਸਾਨ ਸੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਤਾ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, 218 ਐਕਸਪਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, आप आए, फुली ऑनलाइन असाइनमेंट्स आसान सी हैं, कुछ नहीं समझ आता तो हमारे ऑफिस आ जाते हैं। और हमारा पूरा ऑफिस है प्रॉपर, 218 एक्सपर्ट अवेलेबल, आप आए आराम से।
1: अच्छा,
0: आराम से,
1: तो कितने जाना नहीं आना नहीं ते कोई पेपर नहीं होना है?
0: बिल्कुल ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन असाइनमेंट्स आसान सी हैं, कुछ नहीं समझ आता तो हमारे ऑफिस आ जाते हैं। और हमारा पूरा ऑफिस है प्रॉपर, 218 एक्सपर्ट अवेलेबल, आप आए असेसमेंट हमें, आप अभी कॉल भी कर सकते हैं, स्टाफ रेडी है कॉल लेने के लिए आपकी। बाकी अब एक हफ्ता रह गया है, साफ साफ एक हफ्ता रह गया है जी, नेक्स्ट वीक के बाद 10 दिन बाद आप आएंगे, आपको मना ही कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हमारे घर का प्रोग्राम नहीं है, राइट?
1: तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੂ, 40,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜੇ?
0: ਇਸ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ 99% ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹੈ।
1: ਓਕੇ,
2: आपके पास फोन एक लीक है, आपने आज कोर्स ज्वाइन करा, 30 से 90 डेज में आपके अपने फंडिंग आ जाती है, नहीं आएगी तो फीस आप कॉलेज की आप दे नहीं रहे हैं,
3: ते नहीं ऐसी तानू फीस देनी
2: बिल्कुल। और इसमें मैं हम तभी हम फीस बाद में क्यों लेते हैं, क्योंकि 100% अप्रूवल आता है। और आप किसी की अगर चौथी शादी है और चौथी चार शादी से 10 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट उसको प्रोसेस करने में टाइम लगाती है, राइट, वो केस तो कम ही आते हमारे पास, तो इसलिए ज्यादातर सिंपल केस ही होते हैं, तो आराम से निकल जाते स्मूथली 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट में फंडिंग आ जाती है। हमारी छोटी सी फीस आपने बाद में देनी है, स्केल हासिल करें, 30 से 100,000 डॉलर की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, नुकसान ना करें, ऑलरेडी लोग की लह चुके ने लाहा।
3: सो दोस्तों मेन गल आ के यही मैसेज तुसी काफी टाइम तो सुन रहे सी ते इदी लास्ट एंड फाइनल कॉल आ, क्योंकि अगला हफ्ता लास्ट वीक होने वाला, तो हुण तुहाडे कोल समा कुछ दिनों का कुछ घंटिया का रह गया, तुसी कॉल छड के जस्ट नंबर डायल करो, एक बार अपना केस पुछो, क्योंकि जे एलिजिबल आ तो पैसा तुसी ले सकते हो, आपकी स्किल डिवेलप कर सकते हो। इदी डिटेल दे लई नवपाल जी एक बार नंबर साझा कर दो।
2: नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75। हुणे कॉल करो तो एस्टीमेट लो जी 437-264-3175। नो मीठी बातें एंड नो लाइक चलाकी, सब कुछ गारंटेड ओरिजिनल है, कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
3: बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद तुहाडा सर। 437-264-31-75 दोस्तों, 437-264-31-75 ते कॉल करो, ताडे मन दे च कोई भी क्वेश्चन आ कि जी मेरी इनकम इन्नी घट आ की मैं एलिजिबल हाँ, मेरे 2 बच्चे ने की मैं एलिजिबल हाँ, 3 बच्चे ने तो किन्नी फंडिंग आऊगी, मेरे मम्मी डैडी का अपलाई करवाना किन्नी फंडिंग आ सकती है, किहड़ा ताडे मन दे विच जो भी क्वेश्चन आ नागपाल जी ने ओवर द कॉल दस देना, तो जे इन्होंने कहता हाँ जी तुसी एलिजिबल हो, तुसी इन्हां दे ऑफिस जाओ, जिहड़े डाकूमेंट कहिंदे ओह दिओ एंड तुहाडा अपलाई हो जूगा, जदों तुहाडे खाते च 40,000, 60,000, 80,000 आ गया इस तो बाद इन्हां नूं 199 या 499 डॉलर दे देने हैं। अगेन सारी गलबात 437-264-31-75 ते कॉल कर लो, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-3175। बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों रेडियो प्रोग्राम चढ़ती कला अखीर दे विच पहुँच चुके हैं, तो कल नूं प्रोग्राम 2 तो लैके 4 बजे तक पेश करांगे, तो वंस अगेन जे तुसी कोई भी नंबर चाहते हो, अमन जाखड़ जी आटो इंश्योरेंस का नंबर जरूर ले लो, आटो कमर्शियल इंश्योरेंस करवानी है तो अमन जाखड़ नूं कॉल करो, ये कहें इन्हां कोल ना ट्रक ड्राइवर लई एक डिस्काउंट आ, जे तुसी अपने ट्रक चलाने हो तो ये कहें इन्हां कोल एक कंपनी आ वो स्पैशल डिस्काउंट दिंदी आ, वो कहें कई बार वैलिड रीजन हुंदा कि जी मैं तो ट्रक सुबह जाके यार्ड ते खड़ा दिना, सारा दिन ट्रक चलाना, शाम नूं गड्डी चक के घरे, मैं ट्रक यार्ड ते खड़ाया, हाईवे गया, 5 दिन बाद आके गड्डी नूं चक्या ते घरे आया, तो वो लो माइलेज का डिस्काउंट हुंदा कि भाई इन्हां कोल ट्रक का लाइसेंस है, ट्रक ड्राइविंग ने तो यह गड्डी नूं बहुत घट चलाउंदे ने, तो वो लो माइलेज का डिस्काउंट नाल तुसीं एक गुड इनफ मनी सेव कर सकते हो। सो तुसी यह पैसा सेव करना चाहते हो तो नंबर 416-455-1300 ते गलबात की जा सकती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आ, 1 जुलाई तो जो कि पिछे लंघी आ, ये तो ना एक्सीडेंट बेनीफिट जिहड़े हुंदे ने कार दे विच उहो बंद कर दिते गए ने कंपनियों वालों। सो इहदे विच आटो इंश्योरेंस दे विच बड़े बदलाव आए ने, जे तुहाडी आने वाले समय दे विच रिन्यूअल आ रही आ जां तुसी नवी पॉलिसी लैनी आ तुहानू एक्सीडेंट बेनीफिट अलग तो लेने पैणगे। पहला एक्सीडेंट बेनीफिटां दे विच हुंदा सी कि बंदे नू एक्सीडेंट हो गया कम नहीं कर सकदा, उहदी सैलरी रिप्लेसमेंट हुंदे सी, जां उहदे नाल पैसेंजर बैठे ने वह पैसेंजर का खर्चा उहनां दे सट वजी वह खर्चा भी कंपनियां चलदियां सी, जां फिर इस दे विच होर वख वख फ्यूनरल कॉस्ट तक बहुत सारे एक्सीडेंट बेनीफिट हुंदे ने, वह हुण कंपनियां ये पिछों ही बदला ने, ये तुहानू अलग। हाँ फायदा ये आ कि वैसे तो तुसी देखोगे कि यह 40-50-100 डॉलर दे विच ऐड हो जाएंगे, पर बचत तुहाडी 1,000 डॉलर दे विच तुहानू फायदा हो सकता। सो मेक श्योर जे तुसी आटो इंश्योरेंस करवाओगे तो अपने ब्रोकर नू पुछो कि ये एक्सीडेंट बेनीफिट है, जे तुहानू कोई होर जानकारी चाहिए आ आटो इंश्योरेंस च पैसे किवें बचाए जा सकते हैं तो कॉल कर लो 416-455-1300 ते गलबात की जा सकती है। तुहानू प्रोग्राम किवें दा लगदा, तुसी प्रोग्राम च कोई सुझाव देने चाहुंदे हो जां किसी स्पोंसर साहबान दे नंबर चाहुंदे हो तो मैनू कॉल की जा सकती है। मेरा नंबर है 647-921-2132। तुसी अपने बिजनेस अदारे की ऐड साडे नाल करना चाहुंदे हो, रेडियो चढ़दी कला ते सोशल मीडिया द्वारा डॉलर मीडिया इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब पर भी तुहाडी ऐड पोस्ट की जाती है, सो उहदे लई मैनू कॉल कर सकते हो 647-921-2132 647-921-2132 ते एक वीनस आटो परफॉर्मेंस का भी नंबर नोट कर लो। गड्डी का ऑयल चेंज करवाना तो $85 दे विच $85 दे विच गड्डी का 5 लीटर फुली संथैटिक ऑयल चेंज किया जाएगा। तो जे एक्सट्रा $5 इन्हों दिने तो एसी डायगनोज जिदा मार्केट दे विच एसी डायगनोज का $60 तो लैके $150 तक चार्ज किया जाता, इतने सिर्फ $5 च एसी डायगनोज किया जाऊगा। नंबर टू कॉल 416-844-8680 416-844-8680 416-844-8620 ते गल की जा सकती है। तो प्रोग्राम नू फैशन आई क्यू स्पोंसर करते हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रैंड होम फर्नीचर डेरी एंड टॉमकन के फर्नीचर की जो सेल आई विजिट कर सकते हो 6885 टॉमकन रोड से। कल नू भी 10 to 7 PM तक ग्रैंड होम फर्नीचर ओपन रहेगा। तुसी फर्नीचर डीलों के लिए डेरी टॉमकन 6885 टॉमकन रोड में वेट कर सकते हो 6885 टॉमकन रोड। इसी अद्धा प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला, रब तुहानू चढ़दी कला दे विच रखे ते अपनी मुलाकात होणगीआं कल नू 2 to 4। बाकी अगेन मेरे नाल कोई गलबात करनी होवे, किसी स्पोंसर साहब दा नंबर चाहिए जां फिर अपने बिजनेसदारे ऐड तो मैनू कॉल कर सकते हो 647-921-2132 647-921-2132। रब रखा चढ़दी कला।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े आदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ते सारा सत्कार वेलकम टू यू नू खुशामदीद एंड स्वागतम

जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है, दूर थे और दूर है हरदम जमीनो आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में गुर्बत है तो है। बात शमा और परवाने की चली है तो बेपनाह मोहब्बत, परवाना बयां तो नहीं करता मगर अपनी मोहब्बत का इजहार जलकर खाक होकर कर देता है, अपने आप को फना कर देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है। ऐसा ही जिक्र है इस खूबसूरत गजल में, गुलकार हैं गुलाम अली।

0: और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। अजीब इश्क की दास्तां होती है, क्या किसी ने खूब कहा है, तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। सामीन, जिस तरह खुदा का राज कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, उसी तरह इश्क भी कुछ।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.